0: फूल मालिश के मिठो निंद्रा ल्याउने
1: नवरत्न कूल ऑयल को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कूल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कूल ऑयल चिसो चिसो कूल कूल
2: सूचना खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मार्फत यही साउन 28 गते देखि प्रति केजी 5 रुपियाँ छुटमा उपलब्ध गराई विभिन्न किसिमका खाद्य तथा कर्णालीको सिमी बिक्री वितरण भइरहेको सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गमा जानकारी गराउँदछौ।
3: अरुवा मोटो चामल प्रति बोरा 1400, अरुवा मध्यम चामल प्रति बोरा 1450, अरुवा सोना मनसुली चामल प्रति बोरा 1425, स्टिम जिरा मसिनो चामल प्रति बोरा 2125, स्टिम जिरा मसिनो चामल फोर्टिफाइड प्रति बोरा 2125 र कर्णालीको सिमी प्रति केजी 225। सम्पर्क खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय वीरेन्द्र नगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 गोदाम लाइन सुर्खेत।

0: Extreme energy drink.
1: एनएम बिदारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
2: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच आफ्नो अमूल्य बचत आज खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
3: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि